हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुधंदा रहो, बुधंदा रहो।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मल गही मारू डुंगर खा भी डाढा नियर नहीं का चीज में आहे लकी कड़ो ले।

0: अभी बुधो प्या जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 96 सिंध जो आवाज
1: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
0: सिंध जो आवाज
2: इट्स एम दिस टाइम चेक वाइट
3: अल हबीब करंट प्लस अकाउंट बैंक अल हबीब रिश्ता भरोसे का।
4: अब आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर
5: पाकिस्तान के सारा थी रही है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर बेहतरीन कम कहो मुझी जिंदगी में एक पाकिस्तानी शख्सियत फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर आए सच यो आए तो गुजर टिन महीनों में जितो फील्ड मार्शल मुनीर से राबो रो एतरो कें बे से राबो ऐल बोल ना थी। फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर

बिना कंहिं शक जे हिकु अज़ीम सिपा सालार आहे छो त हुन सां गॾु हुन पाण खे माहिर सिफारतकार पिण साबित कयो आहे। डोनाल्ड ट्रंप चयो आहे त ईरान खे लेबनान में फेर ॾुखियाई पैदा करण खे सदर समाजी राब्तनि जी वेबसाइट ते बयान में चयो त इहे न करण ते ईरान खे गुज़िरियल हफ़्ते जीअं ॿीहर पूरी ताक़त सां निशानो बणाईंदासीं।

तनवे जो कलोई के खान में बपोरियत फौत खान में लहण दौरान हेडरम के जंजीर टुटी पई हादसे सबब जुम्मन नादिर राजन फौत फौत थियल बोरियत जा लाश जरूरी कार्रवाई लाइ मकामी अस्पताल मुंतकिल किया वा। बोरोवे जो टोल प्लाजा दर्स शाख वटा एक जणे जो लाश हथ इतलाद पुलिस पहुंची लाश सिविल अस्पताल बोरो मुंतकिल कर छो। पुलिस फौज पहुंची की सुञाण दर्स गोठ के आशिक हुसैन अब्दुल तौफी है। बासन जो चवण आए तो खदशो है तो नौजवान के कतल किया वो है बाकी की जांच कई वे। टकर में पुलिस जा धारदार मुकाबला बदोहारी जख्मी हालत में गिरफ्तार। पुलिस मूजिब आबाद थाना की हद जाफराबाद लिंक रोड वट मुकाबले में नसरुल्ला मीरानी के जख्मी हालत में गिरफ्तार किया। इस्लामाबाद टकरी वट मुकाबले बाद एक द्वारी के जख्मी हालत में गिरफ्तार किया। संदस सुप यासीन मीरानी पहुंची है। कंदकोट में पुलिस जो मुबैना मुकाबलो कतल केस में बदोहारी जख्मी हालत में गिरफ्तार कर दावा। पुलिस मूजिब फायरिंग की डेवट में गुलाम रसूल महमदानी और हसनैन भगवान के जख्मी हालत में गिरफ्तार किया। जवाबदार एक ढी अग दौरान व्यापारी के कतल कर जो एतराब

हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुधंदा रहो।

0: हर जिंदगी की FM 88 नेटवर्क।
1: इट्स 10 टू यू बाय
2: अल हबीब करंट प्लस अकाउंट, भरोसा भी, रफ्तार भी, बैंक अल हबीब, रिश्ता भरोसे का।
3: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
4: ईरान अमेरिका गौर मुकम्मल कतर है पाकिस्तान जो गडल पदर न हाजन जी अजमिन
5: लाए हार्ड लाइन कार्ड बंदी दे अमल दरामद।

0: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا. آواز کی ڈور سے بندھا ہوا.
1: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز.
2: ہم سندھ میں رہنے والے سندھی مہمان نواز ہیں سارے.
1: It's 10:30 AM. This time check is brought to you by
3: Hemé Diamond Glow Bleach Cream, जो deep clean करे और दे चार गुना brightness, चमक ऐसी diamond skin जैसी. Hemé Diamond Glow Bleach Cream.
4: खूबसूरती है जो असल राज. स्किन ब्यूटी क्रीम इन में मौजूद वाइटामिन माइक्रो बीट्स फार्मूलो अवाजी स्किन के बनाए निखरी ए चमकदार सिर्फ बिन डीहन में. डार्क स्पॉट्स के करे खत्म ए कुदरती असली ग्लो. डी स्किन ब्यूटी क्रीम असली ग्लो हर डी जो शो. अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान.

पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: 10:45 AM. This time check is brought to you by
1: हम इस्लामिक बैंकिंग के फरोग में अपना फाल किरदार मुसलसल अदा करते रहेंगे. अस्करी बैंक.
2: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो. डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते.
3: अपना शहर अपना घर मटियारी और मटियारी की आवाज़
4: GFM 91.6.

सखर में पुलिस जहां धारदार मुकाबला बदोहारी जख्मी हालत में गिरफ्तार। पुलिस मौजूद आबाद थाना जद जाफराबाद लिंक रोड पर मुकाबले में नसरुल्ला मीरानी के जख्मी हालत में गिरफ्तार किया वो। इस्लामाबाद तकनीकी हालत में गिरफ्तार किया वो। उसने सुजाणप यासीन मीरानी तौर किया है। कनकोट में पुलिस के मुबैना मुकाबलों कत्ल केस में बदोहारी जख्मी हालत दावा। पुलिस मौजूद गुलाम रसूल ममदाणी वार के जख्मी हालत में गिरफ्तार किया वो है।

0: तो मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5-डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाएं, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेताब निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे FM 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझे मस्त मल कही मारू डूंगर खा भी जाधा का चीज में आहे की करो ले।

0: सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: इस्लाम बचा सकते हैं सिर्फ वहदत से, कुरान बचा सकते हैं सिर्फ वहदत से, इस्लाम बचा सकते हैं सिर्फ वहदत से, कुरान बचा सकते हैं सिर्फ वहदत से।
2: फिर से बाजी तंग नजरी से न नफरत से, ईमान बचा सकते हैं।

0: सकते हैं सिर्फ वहदत से, कुरान बचा सकते हैं सिर्फ वहदत से,
1: फिर से बाजी तंग नजरी से न नफरत से, ईमान बचा सकते हैं सिर्फ वहदत से,
0: इस्लाम बचा सकते हैं सिर्फ वहदत से, कुरान बचा सकते हैं सिर्फ वहदत से, इस्लाम बचा सकते हैं सिर्फ वहदत से, कुरान बचा सकते हैं सिर्फ वहदत से,
1: हम मोहब्बत और अखुवत की फिजा कायम रखें,
2: जो कहा है रब खालिक ने अमल उस पे करें,
1: बेदिली से बुजदिली से।

सकते हैं सिर्फ वहदत से, इस्लाम बचा सकते हैं सिर्फ वहदत से, कुरान बचा सकते हैं सिर्फ।

अपनी हस्ती अपनी मर्जी और न फितरत से जान बचा सकते हैं सिर्फ वहदत से इस्लाम बचा सकते हैं सिर्फ वहदत से कुरान बचा सकते हैं सिर्फ

0: सकते हैं सिर्फ वहदती, इस्लाम बचा सकते हैं सिर्फ वहदती, कुरान बचा सकते हैं सिर्फ वहदती।
1: फिर से बाजी तंग नजरी से न नफरत से,
0: ईमान बचा सकते हैं सिर्फ।

0: सकते हैं सिर्फ वहदत से, इस्लाम बचा सकते हैं सिर्फ वहदत से, कुरान बचा सकते हैं सिर्फ वहदत से।
1: फिर से बाजी तंग नजरी से न नफरत से,
0: ईमान बचा सकते हैं सिर्फ वहदत से, इस्लाम बचा सकते हैं सिर्फ वहदत से, कुरान बचा सकते हैं सिर्फ वहदत से, इस्लाम बचा सकते हैं सिर्फ वहदत से, कुरान बचा सकते हैं सिर्फ वहदत से, इस्लाम बचा सकते हैं सिर्फ वहदत से, कुरान बचा सकते हैं सिर्फ।

0: It's 11:45 AM. This time check is brought to you by.
1: हम इस्लामिक बैंकिंग के फरोग में अपना फाल किरदार मुसलसल अदा करते रहेंगे. अस्करी बैंक.
2: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो. डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते.
3: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़.

0: अभी बुधोपिया जी ए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंधु जो आवाज।
1: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
0: सिंधु जो आवाज बुधंदा रहो।
2: It's 12 PM. This time check is brought to you by
3: अल हबीब करंट प्लस अकाउंट, भरोसा भी रफ्तार भी, बैंक अल हबीब, रिश्ता भरोसे का।
4: अब आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
5: फैसूस में जहाजन अचवन बहाल रखण ऐं ग़लतफ़हमीअ खां बचण जे लाइ हॉटलाइन बि क़ाइम, एटमी प्रोग्राम पाबंदियुनि ऐं तकरारनि जे हल जे लाइ धार वर्किंग ग्रुप्स क़ाइम कया विया। परदेह खाते पारां जारी कयल बयान में चयो वियो आहे त डीकन्फेक्शन सेल में लबनान ऐं सालिस मुल्क शामिल हूंदा। चाकरी कंदड़ मुल्क ॻाल्हियूं तामीरी माहौल में अॻिते वधाइण जे लाइ कोशिशूं जारी रखंदा। टेक्निकल सतह ते ॻाल्हियूं बर्गस्ताक रिज़ोर्ट्स में जारी रहंदियूं।

ईरान जी नाकाबंदी खत्म करे कुछ मुंजमद असासा बहाल कया विया आहिनि। पाकिस्तान ऐं कतर जी टाकड़ी में लबनान जंग जे खात्मे जे लाइ बि अहम अगहराई थी आहे। ईरानी परदेही वज़ीर अब्बास अराग़ची चयो आहे त तेल ऐं पेट्रो केम जी बरामद तां बि पाबंदियूं हटाई वियूं आहिनि। ईरान जी नए से तामीर ऐं तरक़ीअ जो नओं मनसूबो बि शुरू कयो वियो आहे। अमेरिकी सदर जी ईरान खे ॿीहर धमकी, ईरानी प्रॉक्सीज खे छिकताण वधाइण खां रोकण जो मुतालबो। डोनाल्ड ट्रंप चयो आहे त ईरान संदसि ॻाल्हि न मञे त खेसि ॿीहर निशानो बणायो वेंदो। ईरानी क़यादत अमेरिकी सदर ट्रंप जी धमकियुनि खे रद्द करे छॾियो।

0: ऐं ॾखण वेझो अलमपाक बुलंद करण दौरान करंट लॻण सबबि फोत थियल अठ ॼणनि जी जनाज़ी निमाज़ अदा। ॻोठ बडो में दरगाह लूरशाह ते अलमपाक बुलंद करण दौरान अरबाब हसन ऐं ॿिया फोत थिया हुआ। जनाज़ी निमाज़ में SSP शिकारपुर ऐं शिया अॻवाननि समेत सियासी समाज जे अॻवाननि शिरकत कई। माहौल सोगवार।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है, सुनते रहो GAFM 91.6।
3: मेहरान की सकाफत से गुंदा हुआ आवाज की डोर से बंधा हुआ
4: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: या है सिंध जी दिल जी मटियारे एफ एम 91.6 जो आवाज
1: ओ मुझे मस्त मल कही मारू डुगर खा भी जाधा नियर नहीं का चीज में आहे लकी खड़ो नहीं।
2: अपना शहर अपना घर मटियारी और मटियारी की आवाज
3: जी एफ एम 91.6।

0: ही आहे सिंध जी दिल जी मटियारे एफ एम 91.6 जो आवाज
1: ओ मुझा मस्त मल कही मारू डुगर खां भी दादा नियर नहीं का चीज में आहे सकी करो नहीं।
2: It's 12:30 PM. This time check is brought to you by
3: Hame Diamond Glow Bleach Cream. Kare aur de charges chamak aisi diamond skin jaisi. Hame Diamond Glow Bleach Cream.
4: Khoobsurti ka asal raaz sirf D Skin Beauty Cream. Isme maujood vitamin E beads aur jadeed micro beads formula aapki jild ko banaye nikhri aur chamakdar. Sirf 2 din mein dark spots ko kare fade. और दे कुदरती असली ग्लो डी स्किन ब्यूटी क्रीम असली ग्लो हर दिन का शो।
5: तहजीब व सकाफत से सजी सिंध की मेहमान नवाज धरती
6: जिसकी फजाओं में रची बसी है बन के मोहब्बत का साज जी
5: जी की आवाज़।

दरियाए सिंध की लहरों के संग रवा दवा, यह है मोहब्बत और यकजहती का पैगाम यहाँ वहाँ। GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: It's 12:45 PM. This time check is brought to you by.
1: हम इस्लामिक बैंकिंग के फरोग में अपना फाल किरदार मुसलसल अदा करते रहेंगे. अस्करी बैंक.
2: जिंदगी गुजारियो एतमाद से कुरान के समझी बुधंदा रहो. डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 PM ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते.
3: आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़.

0: अपना शहर अपना घर मटियारी और मटियारी की आवाज
1: GFM 91.6।
2: It's 1 p.m. This time check is brought to you by
3: Bank Al Habib, Rishta Bharose Ka.
4: अब आप सुनेंगे GFM नेटवर्क पर KTN News.
5: जाकरे कंदर मुल्क गाड़ियों तांत के बदायन तक कोशिशों जारी रखना। टेक्निकल सतह से गाड़ियों बल्गन स्टॉक रिजोर्ट में जारी रहने दियो।

ईरानी करे कुछ मंजमन असासा जारी कया व्या आहिनि। पाकिस्तान ऐं कतर जे टाकरे में लबनान जंग जे खात्मे लाइ अहम अखबार। परडे वज़ीर अबाइद तेल ऐं पेट्रोल खेम जी बरामद थियल पाबंदियूं हटाए वियूं आहिनि। ईरान जे नए सिर तामीर ऐं तरक़ीअ जो नओं मनसूबो बि शुरू कयो वियो आहे। अमरीकी सदर ईरान खे ॿीहर धमकी। लबनान में ईरानी प्रॉक्सीज़ खे चिकटाण वधाइण खां रोकण जो मुतालबो। डोनाल्ड ट्रंप चयो आहे ईरान सां ॻाल्हि न मञी त खेसि ॿीहर निशानो बढ़ायो वेंदो। ईरानी क़यादत अमरीकी सदर ट्रंप जी धमकियुनि खे रद्द करे छॾियो। इर्सा में सिंध जो नुमाइंदो शफकत हुसैन बीमार हुअण सबबि कारोबार हलाइण खां लाचार। इर्सा सिंध जे गैर हाज़िरी जो फ़ाइदो वठंदे मनपसंद फ़ैसिला करण लॻी। आपाशी खाते इर्सा लाइ मुतबादल प्लान न जोड़ियो। सूबे में पाणीअ जो बहरान संगीन थी वियो। ज़रियनि मूजिबि इर्सा समूरनि गॾजाणनि जा नोटिस ॾिना। सिंध मां केर बि इजलास में शरीक न थियो। पाणीअ जी सख़्त खोट दौरान इर्सा में सिंध जी गैर मौजूदगी सूबे खे वधीक नुक़सान पहुचायो। इर्सा इजलास में सिंध जो आवाज़ न हुजण सबबि पाणी बिल्स बाबति मनपसंद फ़ैसिला कया। सिंध असेंबली जे बजट इजलास में मेंबर जो पाणी खोट जूं दाहूं। सूबाई सतह ते मोटरवे अथॉरिटी क़ाइम करण जी बि तजवीज़। सिंध में बजट ते ॻाल्हाईंदे सूबाई वज़ीर जाम इकरामुल्ला धारे जो चयो सिंध में पाणी जी सख़्त खोट आहे। पंजाब में चनाब दरिया ते नए केनाल ठाहिण जी ॻाल्हि थी रही आहे। सिंध हुकूमत दरिया ते नव मनसूबनि ते मज़म्मत कंदी। नेशनल हाईवे मोटरवे अथॉरिटी क़ाइम करे सिंध जे रोड्स ते कम करे सघिजे थो। सूबाई वज़ीर रियाज़ शाह शिराज़ी चयो त सूबे में पाणी बहरान संगीन थी वियो आहे। फसल पोखण लाइ पाणी ॾिनो वञे। प्याज बुट चयो त मुल्क खे गैस ऐं बिजली ॾींदड़ सिंध में ई गैस ऐं बिजली अणलभ आहे।

जिन में ज़रई पाणी जी खोड ख़त्म न थी। मुख़्तलिफ़ शहरनि में फसल पाणी न मिलण सबब सड़न लगा। बारह में एसयूपी जो पाणी कोट ख़िलाफ़ एहतजाज, रैली कढी धरणो हयो वियो। मीरपुर भठोरो में अवामी तहरीक जो पाणी कोट ख़िलाफ़ एहतजाज, इलाक़े जे शाखनि ऐं वाहन में पाणी छॾण ऐं फसल बचाइण जो मुतालबो। रखण वेझो आलम बुलंद करण दौरान करंट लॻण सबब पहुचल अठ ॼणनि जी जनाज़े बाद तदफ़ीन। जनाज़े में ज़िले आफ़ीसरनि शहरनि इलाके वासनि शिरकत कई। कोट ॿुढो में दरगाह नूर शाह ते आलम बुलंद करण दौरान करंट लॻण सबब अठ ॼणा फौत थिया हुआ। नौशोपुर जी अदालत में एनपीपी सरबराह मुर्तज़ा जतोई सां भाउ ख़िलाफ़ अठ केसनि जी ॿुधणी। मुर्तज़ा जतोई मसरूर जतोई अदालत में पेश। एटीसी जो जज मुक़ररु न हुअण सां ॿुधणी डिस्ट्रिक्ट ऐं सेशन जज कई। वकीलनि जी दलीलनि बाद ॿुधणी 27 जुलाई ताईं मुल्तवी। कोरबा में 5 ॾींहं क़तल थियल आमना कासकली जे कातलनि जी गिरफ़्तारी लाइ वारसनि जो एहतजाज। केस में नामज़द जवाबदार गिरफ़्तार करण जो मुतालबो। मुज़ाहिरीन मूजिब कातल सरियाम घुमी रहिया आहिनि, धमकाए रहिया आहिनि ऐं पुलिस केस में नामज़द जवाबदार गिरफ़्तार करे इंसाफ़ कयो। ऐं बनवाकिल वेझो कचे में हथियारबंद तां धनार मुबैना तौर ते अख़बार। रज़ा गोठ थाणे जेत में माल चाढ़ींदड़ इसाक महर खे हथियारबंद अख़बार करे पिया। बोगियूं जे वारस आहे त पोइ त मेहू चाढ़े रहियो हो त खेसि हथियारबंद अख़बार करे विया आहिनि। पुलिस खे इतलाउ कयो आहे खेसि बाज़ियाब करायो वञे।

0: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है, सुनते रहो जीए एफएम 91.6।
2: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6, सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो, बुदंदा रहो।
1: It's 1:30 PM. This time check is brought to you by
2: Heme Diamond Glow Bleach Cream. Kudrati jizan sa tayar kayal. Jekade kudrati nikhar. Saaf, naram ay roshan chehro. Heme Diamond Glow Bleach Cream.
3: अब आपकी खूबसूरती का फैन वाइट एज ब्यूटी क्रीम

0: मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाए, बनाए निखरा चेहरा। वाइट एज से मिलता निखार ताजगी के साथ वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: सिंध का है ये मुनफरिद एजाज, तहजीब की रखवाली और मेहमान नवाज।
3: GAFM 88
2: नेटवर्क,
4: सिंध की आवाज।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: उन तालिब अल्लाह की दरबार में फरियाद बुलंद की कि ऐ अल्लाह मेरी मदद कर।
1: तो बस आवाज़ गायब आती है, ऐ रसूल याद कर
0: उस अली को जो मज़रहल अजायब है, वो ही आके तेरी मदद करेगा और मुसलमानों को फतेह देगा।

0: Extreme engineering befitting the resolve. Green, Xeno T3.
1: अरब की सरजमीन पे एक ऐसा कुआं था जहां वो जिन्नात रहा करती थी, जिनको हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम भी काबू न कर सके।
2: बस
1: जब रसूल अल्लाह जंगे सकाका से वापस आ रहे थे तो तमाम असहाब प्यासे थे। इतने में रसूल अल्लाह का एक सहाबी हारसा के कहता है, या रसूल अल्लाह, यहाँ एक पानी का कुआं तो है लेकिन उस पर जिन्नात काबिज हैं, किसी को भी वहाँ से पानी लेने नहीं देती। बस कुछ असहाब जाते हैं पानी लेने की कोशिश।
3: अपना शहर अपना घर मटियारी, और मटियारी की आवाज़
4: GFM 91.6।

0: अभी बुधोपिया जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंध जो आवाज।
1: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
0: सिंध जो आवाज बुधंदा रहो।

0: अभी बुधोपिया जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंध जो आवाज।
1: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
0: सिंध जो आवाज बुधंदा रहो।
2: इट्स 2:30 PM। This time check is brought to you by
3: Hemme Diamond Glow Bleach Cream, जो deep clean करे और दे 4 गुना brightness, चमक ऐसी diamond skin जैसी। Hemme Diamond Glow Bleach Cream,
4: खूबसूरती है जो असल राज, सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इन में मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवाजी स्किन के बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ बिन डीहन में। डार्क स्पॉट्स के करे खत्म और दिए कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर डी जो शो। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
5: तहजीब और सकाफत से सजी सिंध की मेहमान नवाज धरती,
6: जिसकी फजाओं में रची बसी है बन के मोहब्बत का साज। जीए एफएम की आवाज,
5: जीए एफएम नेटवर्क, सिंध की आवाज।

हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।

0: शाह लतीफ का सूफी ठिकाना
1: फादिये मेहरान
0: जीए नेटवर्क
1: सिंध की आवाज
0: सूफी ठिकाना
1: सिंध
0: एफएम नेटवर्क
1: सिंध की

0: है अपना घर मटियारी और मटियारी की आवाज
1: GFM 91.6
2: 3 PM
3: कैनेडियन गवर्नमेंट की तरफ
4: नेटवर्क पर KTN न्यूज़
5: खानों को

0: अमेरिकी सदर जी ईरान के बीहर धमकी, लबनान में ईरानी प्रॉक्सीज के छिकताण वधाइण खां रोकण जो मुतालबो। डोनाल्ड ट्रंप चवे तो ईरान संदसि ॻाल्हि न मञी त खेसि बीहर निशानो बणायो वेंदो। आबदा घुर्जे, आबदा हर्मुज जो कंट्रोल अमेरिका पाण वटि बि रखी सघे थो। آبنا ہرمز ایران کی خود مختاری کی علامت ہے۔ آبنا ہرمز بابت حتمی فیصلوں تہران کندو۔ ایرانی پارلیمنٹ کے قومی سلام ٹرمپ کے مخاطب اوان اسا کاروائی کندا ہوں۔ آبنا ہرمز اوان جو جوا عمودی دھاڑیلن جو علاقہ ہے۔ آبنا ہرمز بابت فیصلے جو اختیار ایرانی عوام۔
1: نیسلے ریسرچ سینٹر سوئٹزرلینڈ کے بچوں کے لیے۔
0: सिंध जी गैरहाज़िरी जो फ़ाइदो वठंदे मनपसंद फ़ैसिला करण लॻी। आपाशी खाते हिसाब सूबे में पाणी सां समूरनि गॾजाणियुनि जा नोटिस ॾिना। सिंध मां केर बि इजलासनि में शरीक न थियो। पाणी जी सख़्त खोट दौरान इरसा में सिंध जे गैर मौजूदगीअ सूबे खे वधीक नुक़सान पहुचायो। इरसा इजलास में न हुजण सबबि पाणी विच बाबति मन सिंध असेंबलीअ जे बजट इजलास में खोट जुदा हूं। सूबाई सतह ते मोटरवे अथॉरिटी क़ाइम करण बजट ते ॻाल्हि अथॉरिटी क़ाइम थो। सूबाई वज़ीर रियाज़ शाह शिराज़ी चयो त

0: ਨਵਾਂ ਖਾਨ ਲਾਚਾਰ ਇਰਸਾ ਸਿੰਧ ਜੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਜੋ ਫਾਇਦਾ ਵਠ
1: KTN News।
2: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है, सुनते रहो GAFM 91.6।
3: अभी बुधो प्या GA हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज सिंध जो आवाज बुधंदा रहो।
4: तो मुबारक अली मुर्तजा।

0: सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: शाह लतीफ का सूफी ठिकाना,
2: वादिये मेहरान, सिंध की एक और पहचान।
1: GFM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

ब्यूटी क्रीम 5-डे ब्यूटी प्लान के साथ, एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियां में फुली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए। आप सोप से मिले चमकता ब्यूटी क्रीम। आप बायो ऑप्शनल पाकिस्तान।

के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: अब आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: वजीर आजम शहबाज शरीफ ईरान ऐं अमेरिका विच में स्विट्ज़रलैंड में थियल ॻाल्हियुनि बाबति जारी बयान में चयो आहे त ॻाल्हियुनि दौरान आला सतही कमेटी ते बि इतफ़ाक़ थियो आहे, जेका सियासी निगरानी सां गॾु टेक्निकल ॻाल्हियुनि जे लाइ रस्तो हमवार कंदी। अमेरिकी ईरानी क़यादत जे तामीरी ॻाल्हियुनि ते संदन थोरायतो आहियां, अॻिते वधाइण में मदद करण ते दोस्त मुल्कनि जो बि थोरायतो आहियां, ख़ासि तौर ते कतरी क़यादत जो थोरायतो आहियां। ॻाल्हियुनि खे कामयाब करण वारनि फील्ड मार्शल आसिम अली जी कोशिश ते बि संदसि थोरायतो आहियां। फील्ड मार्शल जी कोशिश ऐं अज़म सबबि अघ भराई थी आहे। नायब वज़ीर आज़म ऐं घरू वज़ीर जो बि किरदार साराह जोॻो रहियो।

इस्लामाबाद मुफ़ाहमती याददाश्त नामे तहत ॻाल्हियुनि जो सिलसिलो जारी रखण जो फ़ैसिलो। निगरानी जे लाइ आला सतह कमेटी क़ाइम। स्विट्ज़रलैंड में थियल ईरान अमेरिका ॻाल्हियुनि जो गॾियल पधरनामो जारी। आबे हरमूज़ में जहाज़नि जे अचवञ बहाल रखण ऐं ग़लतफ़हमीअ खां बचण जे लाइ हॉटलाइन क़ाइम। एटमी प्रोग्राम पाबंदियुनि ऐं तकरारनि जे हल जे लाइ धारदार वर्किंग ग्रुप्स क़ाइम। परडेही खाते चयो आहे त डीकन्फ्लेक्शन सेल में लबनान ऐं सालिस मुल्क शामिल हूंदा। स्विट्ज़रलैंड रोड मैप ते तफ़ाक़ खे सुठो सवण करार ॾेई छॾियो। अमेरिका ऐं ईरान विच में हतमी मुआहिदे जे लाइ 60 ॾींहनि जो रोड मैप मंज़ूर थियण बाद टेक्निकल सतह ते ॻाल्हियूं जारी। ईरानी मीडिया मूजिब ॿिन्ही मुल्कनि विच में टेक्निकल सतह ते ॻाल्हियूं जारी रहंदियूं। ॿिन्ही मुल्कनि जा आला सतही वफ़द ॻाल्हियुनि जो हिसो हूंदा। ईरान जो आला सतही वफ़द रोड मैप ते तफ़ाक़बाज़ स्विट्ज़रलैंड खां वापसि ॾेह रवानो। ईरानी परडेही वज़ीर अब्बास अराग़ची चयो आहे त ईरान जी नाकाबंदी ख़तम करे कुझु मुंजमिद असासा बहाल कया विया आहिनि। पाकिस्तान ऐं कतर जी टाकरीअ में लबनान जंग जे ख़ात्मे जे लाइ बि अहम अगभराई थी आहे। तेल जी बरामद तां पाबंदियूं हटायूं वियूं आहिनि। ईरान जी नए से तामीर ऐं तरक़ीअ जो नओं मनसूबो बि शुरू कयो वियो आहे। अमेरिकी सदर जी ईरान खे ॿीहर धमकी। लबनान में ईरानी प्रॉक्सीज खे छिकताण वधाइण खां रोकण जो मुतालबो। डोनाल्ड ट्रंप चयो आहे त ईरान संदसि ॻाल्हि न मञी त खेसि ॿीहर निशानो बणायो वेंदो। आबला हरमूज़ ते टोल टैक्स अमेरिका खे वठणु घुर्जे। आबला हरमूज़ जो कंट्रोल अमेरिका पाण वटि बि रखी सघे थो। आबला हरमूज़ ईरान जी ख़ुदमुख़्तियारी जी अलामत आहे। आबला हरमूज़ बाबति हतमी फ़ैसिलो तहरान कंदो। ईरानी पार्लियामेंट जी क़ौमी सलामती बाबति सलाहकार इब्राहिम अज़ीज़ी ट्रंप खे मुख़ातिब थींदे चयो आहे तव्हां धमकियूं ॾींदा आहियो, असां कार्रवाई कंदा आहियूं। आबला हरमूज़ तव्हांजो जुआ खानो नाहे, नई जदीद दौर जे सामूंडी धाड़ियुनि जो इलाइक़ो आहे। आबला हरमूज़ बाबति फ़ैसिले जो इख़्तियार ईरानी अवाम ऐं संदसि बहादुर फ़ौज वटि आहे, ॿियो केरु नथो करे सघे।

0: इनकी कराची जो या लाहौर जी कानून से न बचंदी को हीरोइन जो कारोबार करे या हीरन जो न पिनकी बचंदी न पिनको बचंदो कौम असेंबली में गालाइंदे घरू मामलन बाबत मुल्कती वजीर तलाल चौधरी चौधरी हुकूमत पाकिस्तानी पासपोर्ट की इज्जत दुनिया में वधाई है। सऊदी अरब 5000 फकीर पाकिस्तान मोटाया दुबई वालन के भी साग मसलो है अंग अखर डना वाया दहशतगर्दी खत्म करे ही मुल्की मईशत बेहतर कर सके थी।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है, सुनते रहो GAFM 91.6।
3: अभी बुधो प्या GA हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज।
4: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
3: सिंध जो आवाज बुधंदा रहो।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बदलता रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।
0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बदलता रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इसमें मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फॉर्मूला आपकी जिल्द को बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ दो दिन में। डार्क स्पॉट्स को करे फेड और दे कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो।
1: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, उधर रहो।
2: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
3: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
2: जीए

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उदंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: GA FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

आसपास मेरा अली सरकार है। जैसा हूँ जहाँ भी हूँ अली ही संग संग है। इश्क अली ने किया मुझे रंग रंग है। अली का

0: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: ईरानी सदर मसूद पेजवान जी सुभाणे पाकिस्तान जे दौरे ते अचण जा इम्कान। सिफारती ज़रियत मूजिब ईरानी सदर पाकिस्तान जे मुख़्तसर दौरे ते सुभाणे इस्लामाबाद पहुचंदो। मसूद पेजवान पाकिस्तान जी सियासी अस्करी क़यादत सां मुलाक़ातू कंदो। पाकिस्तान जा सूरत हाल में मस्बत किरदार ते थोरा बि मञींदो। अमरीका ईरान विच में हतमी मुआदे लाइ 60 ॾींहनि जो रोडमैप मंज़ूर। लबनान में जंगबंदी ते अमल दरामद लाइ डी कंफ्लिक्शन सेल ठाहिण ते बि इतफ़ाक। अमरीका ऐं ईरान विच में इस्लामाबाद मफ़ावती यादाश्त नामे तहत ॻाल्हियुनि जो सिलसिलो जारी रखण जो फ़ैसिलो। निगरानी लाइ आला सतही कमेटी क़ाइम। स्विट्ज़रलैंड में थियल ईरान अमरीका ॻाल्हियुनि जो गडि॒यल पधरनामो जारी। आबना हरमुज़ में जहाज़नि जी अच वञ बहाल रखण ऐं ग़लति फ़हमी खां बचण लाइ हॉट लाइन क़ाइम। एटमी प्रोग्राम पाबंदियुनि ऐं तकरारनि जे हल लाइ धारदार वर्किंग ग्रुप्स क़ाइम। परडे॒ही खाते चयो आहे त डी कंफ्लिक्शन सेल में लबनान ऐं 40 मुल्क शामिल हूंदा। स्विट्ज़रलैंड रोड मैप ते इतफ़ाक़ खे सुठो सवण करार ॾेई छॾियो। अमरीका ऐं ईरान विच में हतमी मुआदे लाइ 60 ॾींहनि जो रोडमैप मंज़ूर थियण बाद टेक्निकल सतह ते ॻाल्हियूं जारी। ईरान मीडिया मूजिब ॿिन्ही मुल्कनि विच में टेक्निकल सतह ते ॻाल्हियूं जारी रहंदियूं। ॿिन्ही मुल्कनि जा आला सतही वफ़द ॻाल्हियुनि जो हिसो हूंदा। ईरान जो आला सतही वफ़द रोडमैप ते इतफ़ाक़ बाद स्विट्ज़रलैंड खां वापसि ॾे रवानो। ईरानी परडे॒ही वज़ीर अब्बास अराग़ची चयो आहे त ईरान जी नाकाबंदी ख़तम करे कुझ मुंजमिद असासा जारी कया विया आहिनि। पाकिस्तान ऐं कतर जी टियाकड़ी में लबनान जंग जे ख़ात्मे लाइ बि अहम अगफराई थी आहे। तेल जी बरामद तां पाबंदियूं हटायूं वयूं आहिनि। ईरान जे नए सिर तामीर ऐं तरक़ीअ जो नओं मनसूबो बि शुरू कयो वियो आहे। अमरीकी सदर जे ईरान खे ॿीहर धमकी। लबनान में ईरानी प्रॉक्सीज़ खे छिकताण वधाइण खां रोकण जो मुतालबो। डोनाल्ड ट्रम्प चयो आहे त ईरान संदसि ॻाल्हि न मञी त खेसि ॿीहर निशानो बणायो वेंदो। आबना हुर्मुज़ ते टोल टैक्स अमरीका खे वठण घुर्जे। आबना हुर्मुज़ जो कंट्रोल अमरीका पिण वटि बि रखी सघे थो। ख़ुदमुख़्तियारी जी अलामत आहे। आबना हुर्मुज़ बाबति हतमी फ़ैसिलो तहरान कंदो। ईरानी पार्लियामेंट जी क़ौमी सलामती बाबति सलाहकार इब्राहिम अज़ीज़ी ट्रम्प खे मुख़ातिब थींदे चयो आहे त अवां धमकियूं ॾींदा आहियो, असां कार्रवाई कंदा आहियूं। आबना हुर्मुज़ अवां जो नाहे न ई जदीद दौर जी सामूंडी धाड़ेलनि जो इलाइक़ो आहे। आबना हुर्मुज़ बाबति फ़ैसिले जो इख़्तियार ईरानी अवाम ऐं संदसि बहादुर फ़ौज वटि आहे। ॿियो केर नथो करे सघे। برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر عہدے تاں مستعفی۔ ٹین ڈاؤن سیٹ تے میڈیا سا گلائیندے کیئر سٹارمر مستعفی تھن جو اعلان کیو۔ کیئر سٹارمر چیو تا ہن ملکی معیشت کے بن سالن دوران مضبوط کیو۔ پارٹی جی خواہش تے عہدو چھڑے رہے آہاں۔ ایندڑ وزیر اعظم سا بھرپور سہکار کندس۔ ارسام مسن جو نمائندو شفقت حسین وتو بیمار ہون سبب کار कारोबार हलाइण खां लाचार। इरसा हसन जी गैर हाज़िरीअ जो फ़ाइदो वठंदे मनपसंद फ़ैसिला करण लॻी। आबपाशी खाते इरसा लाइ मुतबादिल प्लान न जोड़ियो। सूबे में पाणी जो बोहरान संगीन थी वियो। ज़रियुनि मूजिब इरसा समूरियुनि गॾजणियुनि जा नोटिस ॾिना। सिंध मां केर बि इजलासनि में शरीक न थियो। पाणीअ जी सख़्त खोट दौरान इरसा में सिंध जी गैर मौजूदगी सूबे खे वधीक नुक़सान पहुचायो। इरसा इजलास में सिंध जो आवाज़ न हुजण सबब पाणी वर्च बाबति मनपसंद फ़ैसिला कया विया। सिंध असेंबली जी बजट इजलास में मेंबर जूं पाणी कोट चूंदाहूं। सूबाई सतह ते मोटरवे अथॉरिटी क़ाइम करण जी बि तजवीज़। सिंध जी बजट ते ॻाल्हाईंदे सूबाई वज़ीर जाम विक्रमुल्ला धारे जो चयो त सिंध में पाणीअ जी सख़्त खोट आहे। पंजाब में चनाब दरिया ते नई केनाल ठाहिण जी ॻाल्हि थी रही आहे। सिंध हुकूमत दरिया ते नवनि मनसूबनि ते मज़ामत कंदी। नेशनल हाईवे ऐं मोटरवे अथॉरिटी क़ाइम करे सिंध जे रोड्स ते कम करे सघे थो। सूबाई वज़ीर रियाज़ शाह शिराज़ी चयो त सूबे में पाणी बोहरान संगीन थी वियो आहे। फसल पोखण लाइ पाणी ॾिनो वञे। फयाज़पुर चयो त मुल्क खे गैस ऐं बिजली ॾींदड़ सिंध में ई गैस ऐं बिजली अणलभ आहे। پنکی کراچی جی ہوجائے یا لاہور جی قانون کا نہ بچندے کوکین ہیروئن جے کاروبار کرے یا ہیرن جوں پنکی بچندی نہ پن کو بچندو قومی اسمبلی میں گالائیندے گھرو معاملن بابت مملکتی وزیر طلال چوہدری چیو تو حکومت پاکستانی پاسپورٹ جی عزت دنیا میں ودھائی ہے سعودی عرب 5000 فقیر پاکستان موٹایا ہیں دبئی وارن کے بھی ساگیو مسئلو ہے اگر کا ڈنا ہوا ہیں دہشت گردی ختم کرے ہی ملکی معیشت بہتر کرے سکے تھی
0: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹورک پر کے ٹی این نیوز
2: مٹیاری کے ہو تو آواز بھی مٹیاری کی ہے سنتے رہو جی اے ایف ایم 91.6
3: ابھی بدھو پیا جی اے حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6 سندھ جو آواز
4: او پتا جا پتائی پتا تے وسے نور مجھو تو
3: سندھ جو آواز بدندا رہو

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, उधरदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधरदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।
0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधरदा रहो।

0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
0: जीए FM नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज।
2: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।
0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
0: जीए FM नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज।
3: हजारों में 72 तन थे तस्लीमो रजा वाले, हकीकत में खुदा उनका था और ये थे खुदा वाले। हुसैन इब्ने अली की क्या मदद कर सकता था कोई, वो खुद मुश्किल कुशा और थे मुश्किल कुशा वाले।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6, सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए एफएम नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।
0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6, सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए एफएम नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो।
1: अब आप सुनेंगे जीए FM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: आला सतही वफद गालन में शामिल स्विट्जरलैंड में थियल ईरान अमेरिका गालन जो गडियल पधरनामे मूजिब इस्लामाबाद मफामती याददाश्त नामे तहत गालन जो सिलसिलो जारी रखने जो फैसलो। निगरानी लाए आला सतही कमेटी भी कायम कई वही। आबनाए हुरमज में जहाजन की अचवन बहाल रखण ए गलत फहमी का बचण लाए हॉटलाइन कायम। एटमी प्रोग्राम पाबंदन ए तकरारन के हल लाए धारधार वर्किंग ग्रुप भी कायम। प्रदेश खाते चो है डी कंफ्लिक्शन सेल में लबनान ए ट्याकड़ी कंदड़ मुल्क शामिल हुंदा। स्विट्जरलैंड रोडमैप ते तफाक के सुठो सवण करा दी छो। वजीर आजम शहबाज शरीफ स्विट्जरलैंड के कामयाब दौरे बाद वापस डेह रवानो। वजीर आजम अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामाबाद मफामती याददाश्त नामे तहत अमरीका ए ईरान विच में थियल पहरी आला सतही गडजाणी में मुस्बत अकबराई थी है। हतमी मुआदे लाए 60 डीह की रोडमैप ते इतफाक थियो। गालन दौरान आला सतही कमेटी ते भी इतफाक थियो है जेका सियासी निगरानी से गड टेक्निकल गालन लाए रस्तो हमवार कंदी। अमरीकी ए ईरानी क्यादत की तामीरी गालन ते सदन थोरायतो आया। तारीखी अमल के अगते वधाण में मदद करण ते दोस्त मुल्कन जो भी थोरायतो आया। खास तौर ते कतरी क्यादत जो

ईरानी वफद की वॉकआउट वाली धमकी बावजूद गाल में वही अगभराई थी। गुजरियल 24 कलाक सुठा रहा। लबनान में अमन रो है। आमना हुरमज भी खुलल है। अमरीकी नायब सदर जे डी वेंस आलमी तवानाई एजेंसी जहां इंस्पेक्टर ईरान वींदा और तहरान से थियल मुआदे की निगरानी कंदा। इसराइल के दिफा वाले हक के तस्लीम क्यों था पर लबनान की खुदमुख्तियारी जो भी तहफ़ चाहूं था। गालिन दौरान अमरीका पारा तय कल चार ही हदफ हासिल कया।

ईरानी सदर मसूद पेशकियान सुभाणे पाकिस्तान जे दौरे ते इस्लामाबाद पहुचंदो। संदस साथीअ लाइ इस्लामाबाद खे पाकिस्तान ऐं ईरान जे झंडनि सां सिंगारियो वियो। सफारती ज़रियनि मूजिब ईरानी सदर मुख़्तसर दौरे दौरान पाकिस्तान जी सियासी ऐं अस्करी क़यादत सां मुलाक़ातूं कंदो। पाकिस्तान जा सूरत हाल में मुस्बत किरदार ते बि थोरा मञींदो।

ईरानी परदेही वज़ीर अब्बास राखी चयो आहे त ईरान जी नाकाबंदी ख़तम करे कुझु मंझंदि असासा जारी कया विया आहिनि। पाकिस्तान ऐं कतर जी ट्रैकड़ीअ में लबनान जंग जे ख़ात्मे लाइ अहम अगभराई थी आहे। तेल जी बरामद तां पाबंदियूं हटायूं वयूं आहिनि। ईरान जे नए सिर तामीर ऐं तरक़ीअ जो नओं मनसूबो बि शुरू कयो वियो आहे।

0: आबनाए हुरमज़ ईरान की खुदमुख्तारी की अलामत है। आबनाए हुरमज़ बाबत हतमी फैसलो तहरान कद। ईरानी पार्लियामेंट की कौमी सलामती बाबत सलाहकार इब्राहिम अजीजी ट्रंप के मुखातिब थन्दे तमकू डींदा आस कार्रवाई कन्दा आयू। आबनाए हुरमज़ अवान जो ना नई जदीद दौर की सामूंडी धाड़ेलन जो इलाको है। आबनाए हुरमज़ बाबत फैसले जो अख्तियार ईरानी अवाम ए सनस बहादुर फौज वट है, बो केर नो कर सके। सिंध असेंबली में एमक्यू मेंबर फरहान अंसारी की एमपीएस के बोरीबंद लाशन की धमकी। पीपुल्स पार्टी मेंबर्स जो एहतजाज, घरू वजीर पारा जांच कराने जो ऐलान। सिंध असेंबली में गालंदे एमक्यूएम एमपीए फरहान अंसारी चयो रुगो बोरीबंद लाशन जो जिक्र कंदा आयो। कदें बोरी डिठी अथो? छा बोरी डिसी सकंदो? अवां बोरी सही भी न सकंदा। घरू वजीर ज्यालन जा चयो त एमपीए अणसिधी तरह ऐवान के बोरीबंद लाशन की धमकी डिनी। यह खतरनाक गाल है, मां जांच जो हुक्म दे रो आया। कमेटी की अवां सरबराही कयो। स्पीकर अवेस कादिर शाह चयो त मां इजाजत दियां तो तवां जांच कराए सको था। लफ्ज इंतहाई गलत आहिन। इरसा में सिंध जो नुमाइंदो शफकत हुसैन वधो बीमार होने सबब कारवार हलायण का लाचार। इरसा सिंध के गैर हाजिरी जो फायदो वठंदे मनपसंद फैसला करण लगी। आपाशी खाते इरसा लाइ मुतबादल प्लान न जोड़ियो। सूबे में पानी जो बोहरान संगीन थी वयो। जरियन मूजिब इरसा समूरन गडजाणियुनि जा नोटिस डिना। सिंध मां केर भी इजलासनि में शरीक न थियो। पानी की सख्त खोट दौरान इरसा में सिंध की गैर मौजूदगी सूबे के वधीक नुकसान पहुंचायो। इरसा इजलास में सिंध जो आवाज न होजन सब पानी विर्छ बाबत मनपसंद फैसला कया। पिनकी कराची जी हुजे या लाहौर जी, कानून का न बचंदी। को हीरोइन जी कारोबार करे या हीरन जो, न पिनकी बचंदी न पिनको। कौमी असेंबली में गालंदे घरू मामलन बाबत ममलकती वजीर तलार चौधरी चयो त हुकूमत पाकिस्तानी पासपोर्ट की इज्जत दुनिया में वधाई है। सऊदी अरब 5000 फकीर पाकिस्तान मोटाया आहिन। दुबई वालन के भी साग्यो मसलो है। अंग अखर डिना व्या आहिन। दहशतगर्दी खत्म करे ही मुल्की मैशत बेहतर करे सकी थी।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है। सुनते रहो GAFM 91.6।
3: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, GA हैदराबाद मटियारी FM 91.6। सिंध जो आवाज, ॿुधंदा रहो।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधरदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।
0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधरदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।
3: It's 6:15 PM.
4: This time check is brought to you by
5: White-ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, उधंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।
0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, उधंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: खूबसूरती जो असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम हिन में मौजूद विटामिन ई बीड्स एं जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवाजी स्किन के बनाए निखरी एं चमकदार सिर्फ बिन डीहन में डार्क स्पॉट्स के करे खत्म एं दिए कुदरती असली ग्लो डी स्किन ब्यूटी क्रीम असली ग्लो हर डी जो शो अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान
1: हक सच जो आवाज गीत संगीत जो आवाज जे हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंध जो आवाज बुधंदा रहो बुधंदा रहो
2: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज
3: उसी खित्ते की बनी है आवाज
2: जीए एफएम नेटवर्क
3: सिंध की आवाज
1: हक सच जो आवाज गीत संगीत जो आवाज जे हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंध जो आवाज बुधंदा रहो बुधंदा रहो
2: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज
3: उसी खित्ते की बनी है आवाज
2: जीए एफएम नेटवर्क
3: सिंध की आवाज

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: GA FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जी हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधर दारा।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जी FM नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।

0: जो आवाज गीत संगीत जो आवाज ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज उतरदा रहो उतरदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज
1: GA FM नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।

0: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: सरबराही कयो स्पीकर अवेस कादर शाह चयो त मां इजाज़त ॾियां थो अमां जांच कराए सघो था। लफ़्ज़ इंतिहाई ग़लति आहिनि। धमकियुनि वारे मामले ते हुकूमत ऐं अपोज़िशन मेंबर्स हथ पइजी विया, हिक ॿिए खे धिका।

अमरीका ऐं ईरान विच में हतमी मुआदे लाइ सच ॾियण जो रोड मैप मंज़ूर। लबनान में जंगबंदी ते अमल दरामद लाइ डी कंफ्लिक्शन सेल ठाहिण ते इतफ़ाक। ॿिन्ही मुल्कनि विच में हतमी मुआदे लाइ सठ ॾींहनि जो रोड मैप मंज़ूर थियण बाद टेक्निकल सतह ते ॻाल्हियूं जारी। ॿिन्ही मुल्कनि जा आला सतही वफ़द ॻाल्हियुनि में शामिल। स्विट्ज़रलैंड में थियल ईरान अमरीका ॻाल्हियुनि जो गॾियल पधर।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: FM नेटवर्क सिंध।

0: परेशान भी तू।
1: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6, सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।
2: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
3: उसी खिते की बनी है आवाज,
2: जीए एफएम नेटवर्क,
3: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जी हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6, सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खिते की बनी है आवाज,
1: जी एफएम नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इसमें मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रोबीड्स फॉर्मूला आपकी जल्द को बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ दो दिन में। डार्क स्पॉट्स को करे फेड और दे कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो।
1: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बदलता रहो।
2: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
3: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
2: जीए FM नेटवर्क,
3: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, बदलता रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खिते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खिते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: इटली लाए इजाजत नहीं चली। अमरीकी नाणे खाते पारा ईरान के लाइसेंस जारी। अमरीकी नाणे खाते मूजिब ईरान 21 अगस्त ताई पेट्रोल ए पेट्रो केमिकल शयूं विक्रय करे सकंदो। तेहरान पेट्रोलियम वारियूं शयूं अमरीका के भी विक्रो करे सकंदो।

अमरीका ऐं ईरान विच में हतमी मुआदे लाइ 60 ॾींहनि जो रोडमैप मंज़ूर। लिबनान में जंगबंदी ते अमल दरामद लाइ डी कंफ्लेक्शन सेल ठाहिण ते बि तपाक। ॿिन्ही मुल्कनि विच में हतमी मुआदे लाइ 60 ॾींहनि जो रोडमैप मंज़ूर थियण बाद टेक्निकल सतह ते ॻाल्हियूं जारी। ॿिन्ही मुल्कनि जा आला सतही वफ़द ॻाल्हियुनि में शामिल। स्विट्ज़रलैंड में थियल ईरान अमरीका ॻाल्हियुनि जो गडि॒यल पधरनामे मूजिब इस्लामाबाद मफ़ामती यादाश नामे तहत ॻाल्हियुनि जो सिलसिलो जारी रखण जो फ़ैसिलो। निगरानी लाइ आला सतही कमेटी बि क़ाइम कई वई। अपने हरमुस में जहाज़नि जी अच वञ बहाल रखण ऐं ग़लति फ़हमी खां बचण लाइ हॉटलाइन क़ाइम। एटमी प्रोग्राम पाबंदियुनि ऐं तकरारनि जे हल लाइ धारदार वर्किंग ग्रुप्स क़ाइम। परडे॒ही खाते चयो आहे त डी कंफ्लेक्शन सेल में लबनान ऐं सालिस मुल्क शामिल हूंदा। स्विट्ज़रलैंड रोडमैप ते इतफ़ाक़ खे सुठो सवण करार ॾेई छॾियो। वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ स्विट्ज़रलैंड रवानो। इस्लामाबाद मफ़ामती यादाश तहत अमरीका ताईं गॾिजाणी में मस्बत अखबराई थी आहे। हतमी मुआहिदे लाइ 60 ॾींहनि जे रोडमैप ते इतफ़ाक़ थियो आहे। ॻाल्हियुनि दौरान आला सतही कमेटी ते बि इतफ़ाक़ थियो आहे, जेका सियासी निगरानी सां रस्तो हमवार कंदी। अमरीकी ऐं ईरानी क़यादत जी तामीरी ॻाल्हियुनि ते संदन थोरायतो आहियां। कार्य वधाइण में मदद करण ते दोस्त मुल्कनि जो बि थोरायतो आहियां। ख़ासि तौर ते कतरी क़यादत जो थोरायतो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जी कोशिश ते बि संदसि थोरायतो आहियां। फील्ड मार्शल जी कोशिश ऐं अज़म सबब अगभराई थी आहे। नायब वज़ीर आज़म ऐं घरू वज़ीर जो बि किरदार साराह जोॻो रहियो। ईरानी अफ़वाह जी वॉकआउट वारी धमकी बावजूद ॻाल्हियुनि में वॾी अखबराई थी। गुज़िरियल 24 कलाक सुठा रहिया आहिनि। लबनान में अमन रहियो आहे। आबना हरमुस बि खुलियल आहे। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस चयो आहे त आलमी तवानाई एजेंसी जा इंस्पेक्टर ईरान वेंदा ऐं तेहरान सां थियल मुआहिदे जी निगरानी कंदा। इसराइल जे दिफ़ा वारे हक़ खे तस्लीम कयूं था, पर लबनान जी खुद मुख़्तारी जो बि तहफ़ुज़ चाहियूं था। ॻाल्हियुनि दौरान अमरीका पारां तय कयल 4 हदफ़ हासिल कया आहिनि। ईरानी सदर मसूद पसी

सिंध में ज़री पाणी जी खोट खत्म न थी। मुख़्तलिफ़ शहरनि में फसल पाणी न मिलण सबब थियण लगा। वारे में एसयूपी जो पाणी कोट ख़िलाफ़ एहतजाज, रैली कढी धरणो बि हयो वियो। मीरपुर भठौर में अवामी तहरीक जो पाणी कोट ख़िलाफ़ एहतजाज, इलाइक़े जे शाखनि ऐं बाहनि में पाणी छॾण ऐं फसल बचाइण जो मुतालबो।

0: मटियारी के हो कि मटियारी की है, सुनते रहो GAFM 91.6।
1: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, GA हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।

सजाया हुआ नूरी दरबार है, मेरे आसपास मेरा अली सरकार है। जैसा हूँ जहाँ भी हूँ अली ही संग संग है, इश्क अली ने किया मुझे रंग रंग है अली का।

अल्लाह जाने वसदाए अली साढ़े छावा बीचे जिंदगी गुजार दिए अली दिया छावा बीचे अली दाए प्यार असा मंगिया दुआ बीचे जहान बिच नारा अली अली है मस्ते मलंगा का गुजारा अली अली है जानदा है हाल अली सुन दसा।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बदलता रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: तो मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5-डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा, वाइटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाएं, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेताब निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, बदलता रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए एफएम नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।
0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, बदलता रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए एफएम नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।
0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, बदलता रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए एफएम नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।
3: हजारों में 72 तन थे तस्लीमो रजा वाले, हकीकत में खुदा उनका था और ये थे खुदा वाले। हुसैन इब्ने अली की क्या मदद कर सकता था कोई, वो खुद मुश्किल कुशा और थे मुश्किल कुशा वाले।
4: अल्लाह की रज़ा मोहब्बत हुसैन की, मोहब्बत हुसैन की।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।
0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, उतरदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जी हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, उधर रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जी FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।
0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, बदलता रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, उधरदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।
0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, उधरदा रहो।
1: जिस धरती

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6, सिंध जो आवाज, बदलता रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए एफएम नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।
0: हक सच जीए प्यारी एफएम 91.6,
1: धरती से जुड़ा है कलंदर लाल
2: है आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उतरदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: GA FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।